तो उसके कंपनीज के साथ भी डील रहती है, तो बकायदा सर्वे करते रहते हैं कंपनीज वाले कि लोगों का ट्रेंड क्या है, क्या और पेश किया जाए, लोग किस चीज पे जाते हैं। कहते हैं कि बाज़ वक़्त बिल्कुल चीप सी चीजें होती हैं लेकिन महंगी से महंगी करके बेचते हैं और बड़ी बड़ी इश्तहार साथ लगाते हैं ताकि लोगों को ट्रैप किया जाए, हालांकि असर उसका कोई खास नहीं होता। फिर एक कंपटीशन चल पड़ा, और कल भी जैसे बात हो रही थी कि औरत के ज़हानत, काबिलियत, लियाकत, उसके अखलाक, उसके दीन, उसके खानदान, किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं रही। सिर्फ अगर एक वैल्यूएबल चीज रहेगी तो वो हुसन रह गया, या हुसन को मजीद निखारने का जिसको ज्यादा तरीका आता हो। और इस सब से औरत ठीक है शौहर के लिए जायज है, लेकिन शौहर के लिए भी वो क्या बन गई है, गुड़िया बन गई बस। यानी चाहे शौहर के लिए भी हो तो उसकी भी एक लिमिट्स है कि औरत का काम सिर्फ सजना बनना और दूसरे के लिए बस एक खूबसूरत पीस, शो पीस बन के रह जाए, इससे आगे वो कोई चीज नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारियां नहीं है, उसको कुछ और नहीं करना, उसके अंदर कोई रूह नहीं है, कोई अकल नहीं है, कोई। सिर्फ हिजाब के मसले को महज हिजाब के साथ मत रिलेट कीजिए कि ये जो हिजाब है और पाबंदी है और औरतों को बंद कर दिया गया और बिल्कुल वो बाहर नहीं निकल सकती और विटामिन डी से महरूम रहे, धूप शूप ना लगे उनको, और ये नहीं है। बात यह है कि वह हिजाब क्यों, और अगर नहीं तो क्यों, वजह क्या है, तो पूरे दीन के उसमें रख के देखिए कि ये एक हिस्सा है और मुसलमान औरत की पहचान है। अब मैं आखिरी आयत में क्या पढ़ा, जाले का अदना अयो रखना, कि ऐसे लिबास में मुसलमान हो रहा तो दूर से पहचानी जाए वो मुसलमान जा रही है। हिजाब और मुसलमान औरत लाजिम व मलजूम है, उसके बगैर उसका तसव्वुर ही नहीं। यानी औरत के इस्लाम का तसव्वुर किसके साथ है, उसके ड्रेस के साथ। इसका यह मतलब नहीं कि सिर्फ ड्रेस आप पहन लें और बाकी अंदर से काले रहें, नहीं, अंदर को भी साफ करने की जरूरत है क्योंकि वो तो मकसूद है, लेकिन जितना वो अंदर जरूरी है इतना बाहर ये भी जरूरी है। मसलन एक आप बेहतरीन किस्म का खाना खा रहे हैं लेकिन जिस बर्तन में खा रहे हैं वो बाहर से मैला है, तो आप नहीं खा सकते खाना। इसी तरह बेहतरीन किस्म का बर्तन है, खूबसूरत तरीन, लेकिन जो खाना है वो बदमजा है, आप नहीं खा सकते। तो खाने के लिए क्या जरूरी है, दोनों ही चीजें साफ हो, बाहर का बर्तन भी साफ और अंदर की चीज भी साफ। इसी तरह दीन भी हमसे क्या मुतालबा करता है कि हम बाहर से भी मुसलमान नजर आए और अंदर से भी मुसलमान हो। कहीं ये नहीं कहा गया कि सिर्फ दिल का पर्दा होता है और जाहिर न करो, और कहीं ये नहीं कहा गया जाहिर तो कर लो और दिल बेईमान रखो, नहीं, दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। अब मसलन आप देखिए कि जैसे शराब के बारे में भी लोग कहते हैं कि कहां लिखा है हराम है, जैसे ये पर्दे के बारे में हर तरह तरह की हुज्जतें होती है, ऐसे शराब के बारे में भी हुज्जतें होती है। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको पढ़ के सुनाती और शायद एक यही वाक्य शराब की हुरमत के लिए काफी है। कोई कुरान की आयत ना सुनाई जाए, कोई हदीस ना सुनाई जाए, सिर्फ आप अपनी अकल से फैसला कर लीजिए। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, चंद गलत किस्म के दोस्तों की रफाकत से शराब पीने का इत्तेफाक हुआ। इस दरमियान बदकिस्मती से अपनी 17 साल बच्ची से बदफेली का मर्तकब हुआ। 4 महीने गुजरने के बाद मालूम हुआ कि बच्ची हामला है। मैंने खुद बच्ची से पूछा, बाप ने खुद बच्ची से पूछा तो बच्ची ने बताया कि ये आपका काम है। आप यकीन करें, ये तहरीर उस शख्स की लिखी हुई है जो मेरे सामने सो, आप यकीन करें, सिर्फ मुझे इतना पता है कि मैंने कुछ शरारत की मगर ये किस तरह हो गया मुझे कुछ याद नहीं, ये मुझे होश आने पर मेरी बच्ची ने बताया। अम्मा पूछती है, सवाल है, मेरे शौहर ने मेरे बच्ची के साथ ज्यादती की नशे की हालत में, इस बच्ची के अलावा 4 छोटे बच्चे हैं, शोहर के अलावा कोई हमारा ख्याल करने वाला नहीं। बन्नौरी टाउन वालों ने फतवा दिया कि औरत हमेशा के लिए हराम हो गई है, फौरी तौर पर औरत को तलाक दे दीजिए, यानी बीवी को। आप सिर्फ मुझे इतना बताएं कि इस्लाम फितरी दीन है, कसूर नादानी मेरे शोहर की और सजा मुझे क्यों दी जा रही है, छोटे बच्चों वाली माँ तलाक लेकर इस दौर में क्या इज्जत की जिंदगी गुजारेगी, मेरा और शौहर का इतने सालों का साथ है, क्या इस वजह से टूट जाएगा, आप बताइए। सिर्फ एक वाक्या, आप अपनी अकल से फैसला कर लें कि शराब हलाल है, होनी चाहिए हलाल जो किए हुए हैं लोग, इसलिए कि अकल का नुकसान है, हलाल हराम की तमीज मिट जाती है। इस्लाम ने जिस चीज पर भी पाबंदी लगाई है वो किसी जिद में नहीं लगाई, किसी को सताने के लिए नहीं लगाई,

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया।
0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
3: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
2: अलिफ

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: समय, जैसा कि आप सबको मालूम है कि मलक सदीक साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून स्कैंडिनेविया के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, काफी अरसा से वो अलील थे। आज उन्होंने मेरे लिए एक पैगाम छोड़ा है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आइए मिलकर मलक साहब का पैगाम सुनते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम जनाब राज साहब। राज साहब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मैं इंशाल्लाह अब तंदुरुस्त हो गया हूँ अल्लाह के फजल व करम से, और बहुत जल्द मुलाकात होगी और इंशाल्लाह दोबारा हम नए से रौनक लगाएंगे और अपने मुस्लिम लीग के काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर आपको ईद मुबारक कहता हूँ।
1: समाइन, मलक साहब ने कम्युनिटी फोरम के चेयरमैन राजा गफूर अफजल को अपना पैगाम सेहत याब होने के बाद पहली दफा मीडिया पर
0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। समय ये मिला जुला प्रोग्राम है। समाइन इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सदर मोहतरम रहमतुल्ला बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेग साहब, एक बार फिर हम आपको अदारा आपकी आवाज पर खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी राज साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज है।
1: बेग साहब, आप इतनी बड़ी जमात की, अपोजिशन की जमात के आप सदर हैं, लेकिन आपकी आवाज कमजोर हो जाती है जब आप माइक पे बोलते हैं।
2: यार मैं तो बहुत अच्छी तरह बोलता हूँ और अल्लाह के फजल करम से मेरी आवाज भी ठीक ठाक है, कोई कुछ प्रॉब्लम भी नहीं। पता नहीं ये कोई रेडियो या फोन के सिस्टम में कोई खराबी हो सकती है।
1: बेग साहब चलें, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, ये भी आज कोरोना वायरस का प्रोग्राम है, तो आप कोरोना वायरस के बारे में क्या कहेंगे सामाइन को?
2: इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो जरा बड़ी उम्र के लोग हैं उनको चाहिए कि अपने घरों तक महदूद रहें और अपने बच्चों के जरिए सारी चीजें मंगवाएं बाहर से और एहतियात करें, और डेली जो है ना वो आप नहाएं। सुबह जो है ना जरूर हर आदमी जो है डेनमार्क रहने वाला पाकिस्तानी उसको चाहिए साबुन से अच्छी तरह नहाए और अपने बाल वगैरह सारा बदन साफ करे, और दिन में 2-3 मरतबा खाने से पहले खाने के बाद आप अब साबुन से हाथ धोया करें अच्छी तरह, और ख्याल रखा करें आप कि आपके बच्चे जो है वो भी हाथ धो के खाना खाए। और दूसरा, और जिसको ये तफीफ हो कि शक हो कि उनको ये सिम्टम है तो उनको चाहिए कि फौरन से पहले वो जो यहाँ के जो दिए हुए नंबर है उन पर फोन करें और टाइम ले, और टाइम लेके अपने आप को चेक करवाए।
1: बेग साहब अच्छी बात है। बेग साहब, एक तो आपके जो लीडर हैं या आपके स्कैंडिनेविया के चीफ ऑर्गेनाइजर मलिक सदीक साहब, आपको मुबारक हो। आज उनका मैसेज जो है हमने अदारा आपकी आवाज़ पर हमें भेजा था उन्होंने ईद के हवाले से, तो आज मैसेज जो उनकी वॉइस जो है हमने अपने सामान के साथ शेयर की है, आप क्या कहेंगे?
2: जी ये बहुत अच्छा कदम है, अल्लाह ताला उनको अच्छी सेहत अता फरमाए, हमें तो बहुत खुशी है। इंशाल्लाह चंद रोज के बाद हम मीटिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर जो है मलिक मोहम्मद सदीक साहब वो सदारत करेंगे इजलास की, और इंशाल्लाह ताला सारे लोग देखेंगे वो सेहतमंद होके दोबारा अपनी जमात के साथ खड़े हैं।
1: बेग साहब, 14 अगस्त बहुत करीब आ चुका है, 14 अगस्त के हवाले से आपका कोई प्रोग्राम है?
2: जी हमारा हर साल 14 अगस्त का प्रोग्राम होता है और इस साल भी है, और इंशाल्लाह ताला आपको इन्फॉर्म किया जाएगा।
1: चलें, इस वक्त मतलब 14 अगस्त का आपका प्रोग्राम है?
2: जी जी बिल्कुल, हर साल होता है भाई जान।
1: बेग साहब, इस वक्त कोई कम्युनिटी को कोई आप मैसेज देना चाहें?
2: कम्युनिटी के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो आपका रेडियो जो है उनको गाइड कर रहा है, इसमें और भी कोई लोग हैं जो कम्युनिटी में, आप चेयरमैन है कम्युनिटी के, आपसे बेहतर मैसेज कौन दे सकता है आवाम को।
1: चले बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
2: जी राज साहब वेलकम, जब भी चाहे मैं हाजिर हूँ आपकी, जो जब भी चाहे।
1: बहुत शुक्रिया बेग साहब। समान ये थे रहमतुल्ला बेग साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर हैं।

0: आपका मतलब है करामत, एक जो COVID-19 का टेस्ट आप बुकिंग कर सकते हैं या टाइम ले सकते हैं। इसके अलावा है, दो तीन ऐप भी अब आ गए हैं यहाँ पर, जैसे डॉक्टर ऐप है और है KRY ऐप है, यानी ये ऐप है, डाउनलोड करके आप डायरेक्ट यानी ऑनलाइन अपने ऐप के थ्रू वीडियो कॉल, इसको आप कह सकते हैं, तो डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं और वो मतलब है उससे बिल्कुल मदद ले सकते हैं। और ये बहुत अच्छा ये हो गया कि हर वक्त यानी आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये डिजिटल टेक्निक जो है कम्युनिकेशन है ये बहुत ज्यादा आजकल आम हो गई है। जी
1: कमरान, इसके अलावा जो आप सुनाया कि स्वीडन में जो कोरोना वायरस की जो रेशियो है वो जो है वो नीचे जा रहा है, क्या ये बात दुरुस्त है?
0: हाँ जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि रेशो मतलब है जा रही है, नीचे जा रही है, जो बहुत अच्छी यानी एक करामत है। शुरू शुरू में आपको पता है, क्योंकि इसकी वजह दो तीन और भी आई हैं, जो मैंने जो थोड़ा सा मीडिया को, स्वीडिश मीडिया को फॉलो किया, वो दो तीन बता रहे हैं। एक तो ये बता रहे हैं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा होना शुरू हो गई है, वो खुद मतलब पहले इतने लोगों को, और दूसरी बात है लोगों को नॉलेज इंफॉर्मेशन भी नहीं थी, तो ये लोगों को आना शुरू हो गई है और लोग इसको सीरियस लेना शुरू हो गया। पहले आपको पता है कोई नई चीज जब आती है लोगों को पता नहीं होता है, लोग थोड़े से मतलब उस चीज को इतना सीरियस नहीं लेते, तो ये जगह जगह आपको पता है कि जब सोशल हर जगह लिखा होता है, हर, और ये भी कानून बन गया कि कोई भी यानी शॉपिंग मॉल हो, कोई यानी पब्लिक एरिया हो, तो वहां पर हमेशा आपको बोर्ड लगना चाहिए कि आप डिस्टेंस करें और आप हाथ धोएं, अब आप जिधर भी आप जाएं तो कि भाई अब उन्होंने ना वहां पर सैनिटाइजर रखे हुए हैं, हाथ धोने के लिए रखे हुए हैं। और आजकल जो मैंने जो एक डिफरेंट भी स्वीडन में ये चीजें देखी हैं कि अभी यहाँ पर अगर आप पब्लिक टॉयलेट्स या पब्लिक जगह पर आप जाते हैं तो वहां पर आजकल वो सेंसर लगे हुए हैं टूटी का, यानी हाथ आपको वो टूटी खोलने की जरूरत नहीं होती, हाथ आगे आप करते हैं तो वो पानी आ जाता है। तो डिफरेंट जगहों पे ये चीजें भी बहुत हो गई हैं। फिर इसके अलावा उन्होंने बसों के अंदर इस वक्त स्पेशली मालमो में, और भी ऐसे ही होगा लेकिन मुझे मालमो का पता है, क्योंकि अब बसों के अंदर भी अब जैसे आप पहले आप टिकट लेते थे तो वो ड्राइविंग ड्राइविंग आपका ड्राइवर आपका टिकट देखता था और फिर आपको आने की इजाजत होती, तो अब आप उस डोर से भी नहीं आ सकते अब, लेकिन अब उन्होंने पीछे लगा दिए तो आप यानी जो पीछे वाला वहां से आप जा सकते हैं उसके अंदर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर भी यानी दो तीन चीजें हैं कि एक चीज ये भी हो गया कि यहाँ की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो वो उस भी थोड़ा सा मसला हो गया कि यहाँ पर वो तकरीबन ओवर 200 जो यानी ड्राइवर हैं वो भी जॉब से जा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी ना अवॉइड करना शुरू कर दिया ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट के लिए, तो ये थोड़ी सी मतलब है एक नुकसान हो रहा है, क्योंकि इतने लोग मतलब है पैसे जनरेट नहीं हो रहे, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान तो उस बंदे को होगा, आपको पता ही है जिसके पास गाड़ी नहीं है या थोड़ा दूर रहता है, उसने अपनी जॉब पे जाना है या अपना कोई चीजें खरीदने के लिए जाना है या कोई दोस्त के पास जाना है या कोई इस तरह, तो ये चीजें भी यानी थोड़ा सा मसला यहाँ शुरू हो गया। लेकिन अब भी थोड़ी सी यानी हम आपको पता है हम सोशल डेमोक्रेट से मेरा ताल्लुक है, हम हमेशा अगेंस्ट होते हैं कि आप किसी को मतलब है जॉब ना दे, तो एक एक और हमारी पार्टी की तरफ से एक ओपिनियन आई है ये वाली कि आपको पता है कि अभी अगस्त का महीना शुरू हो गया है, अभी 2 अगस्त है आज, तो ये हो गया कि अभी स्कूल शुरू हो जाएंगे, जस्ट कोई 11 को स्कूल शुरू होने हैं या किसी ने यानी इसके वैसे ऐसा स्कूल शुरू होने, तो ये भी मतलब बातचीत हो रही है कि आप स्कूल को मिसाल के तौर पे उनका जो स्कूल का जो स्टार्टिंग टाइम है ओपन जिस तरह जाना है तो दूसरे स्कूलों से यानी आप थोड़ा डिफरेंस कर लें, ताकि बच्चे मिसाल के तौर पे एक स्कूल अगर 8 बजे शुरू होता है तो ये तो सेकंड जो स्कूल है उसके बच्चे तो आप उसको 8:30 कर दें, यानी बच्चों को भी आप टाइमिंग के थ्रू, जिसकी छुट्टी मिसाल के तौर पे किसी की छुट्टी 3 बजे होनी है किसी की 4 बजे होनी है तो अगले दिन जो दूसरा स्कूल है वो 9 बजे शुरू कर दे, यानी इस किस्म के यानी ये भी एक एक एक किस्म से एक आइडिया दिया है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को किसके मतलब आप डिवाइड कर दें डिफरेंट टाइम से, ताकि आपके जो स्टूडेंट्स भी आए वो एकदम बसें ना भरें। अब आपको पता स्कूल में स्टूडेंट्स मतलब है डिफरेंट स्कूल जो आपको बताया उनको उनके पास वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं क्योंकि ये थोड़ी चीप होती है, वो गाड़ी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये डिफरेंट यानी आइडियाज है यहाँ पर कि भाई किस तरह से हमें मतलब है क्या करना चाहिए कि भाई कि हम नहीं चाहते कि बस जो ड्राइवर है उनको भी मतलब है जॉब जॉबलेस ना हो और उनको भी रखा जाए।

0: लेकिन काम भी चलता जाए, तो अब इसके बारे में भी काम हो रहा है। जी
1: कामरान, आपने बड़ा अच्छा किया, तफसील से बताया। तो कामरान, अब जो सियासी हालात, चूंकि आप सियासत से भी आपका तल्लक है, तो सियासी हालात जो है, आपकी हुकूमत क्या कुछ कर रही है नई चीज़ें, या सियासी पार्टियां कोई तब्दीली लाना चाहती हैं, या आपकी पार्टी कोई तब्दीली लाना चाहती है?
0: बहुत बहुत अच्छा आपका वो ये क्वेश्चन है। पहली बात जो आपको शुरू शुरू में जब आपको बताया कि जब यहाँ COVID-19 आया तो बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म स्वीडन को मिला, क्योंकि जो यहाँ की जो आपको पता है डिफरेंट जो अपोजिशंस की पार्टीज होती हैं, और उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया है कि जो वजीर आजम को चला जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन नहीं किया। फिर वो कंपेयर करते थे कि डेनमार्क ने लॉकडाउन कर दिया, आपके डेनमार्क ने मतलब है नॉर्वे ने कर दिया, फिनलैंड ने कर दिया, फ्रांस में कर दिया है, यूके में हो गया, इटली में हो गया, स्पेन में नहीं, यू गो ऑन, अमेरिका तक में हो गया, जर्मनी में, मतलब ये आप अगर देखें फॉलो करें। लेकिन वो कहते हैं कि देखें यहाँ कम हुआ यहाँ पर, तो लेकिन जो स्वीडन ने एक स्टेटस यानी जो जो कहा मतलब है कि आप देखें कि अगर हम वहां पर अगर बंद हुआ है मतलब है डिफरेंट जगहों पे, तो वहां पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है वहां पर, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी मतलब है इस चीज को हमने लॉकडाउन नहीं करना, क्योंकि हमारे पास इतने मतलब है हॉस्पिटल हैं, इतनी हमारे पास जगह है, इतनी बेड है हमारे पास, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारी आर्मी यानी डिफरेंट उन्होंने वो भी लगा दिए, खैमे भी यहाँ लगे हैं, टेंट्स भी लगे हैं, तो हम इस चीज को कवर कर सकते हैं। मतलब है ये हम मतलब है हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कि एक हॉस्पिटल में 50 बंदों के बेड है, क्रिटाइन उन्होंने बनाया हुआ है, COVID-19 के 50 पेशेंट वो ले सकते हैं, लेकिन वो वहां पर 50 नहीं आ रहे, वहां पर 20 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। तो उनको अगर वो ये देखते कि मिसाल तौर पर 50 का बेड है लेकिन उनके पास 100 आ रहे हैं, 200 आ गए, अगली दफा उनके पास 250 आ गए, फिर तो वो मतलब है उस चीज को लॉकडाउन करें क्योंकि उनके पास कैपेसिटी नहीं है, ओवरफ्लो हो गया, मतलब कोलैप्स हो गया है सिस्टम सारा, फिर तो समझ भी आती है। तो इस वजह से स्वीडन ने मतलब है इस चीजों को भी के किया है कि जो मेन जो, और फिर दूसरी बात ये भी है कि अगर मिसाल के तौर पे वो लॉकडाउन करते हैं तो पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के साथ घर में रहेंगे क्योंकि स्कूल भी लॉकडाउन उन्होंने किया, तो इस वजह से उन्होंने जो डे केयर है वो भी लॉकडाउन नहीं किया, तो जो डॉक्टर्स थे, जो नर्स थे, जो पैरामेडिकल के स्टाफ थे, जो मिसाल के तौर पे एम्बुलेंस चलाते हैं, जो टैक्सी वाले लोग थे, जो जो जो मिसाल के तौर पे जो टैक्स ऑफिस में काम करते हैं, जिस जिनकी जिनकी मतलब है ये जो सिस्टम जो था, ये उन्होंने वो जॉब पे आ रहे थे, बकायदा सिस्टम मुल्क एक ना वो चल रहा था, मतलब हर चीज एक अपने सिस्टम में थी और बकायदा काम कर रही थी, तो उन्होंने इस चीज को भी देखा कि भाई ये भी मतलब है तरीके से हम करें। और फिर इन्होंने ये भी कहा कि जो COVID-19 है ये बच्चों पे इतना ज्यादा, क्योंकि उनके जो इम्यून डिफेंस सिस्टम होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो स्टैटिस्टिक और इन्होंने अपने एनालाइज किए कि वो बच्चों पे इतना असरअंदाज नहीं हो रहा है कंपेयर टू जो हमारे सीनियर हैं, तो उन्होंने फिर वो उसकी वो बनाई कैटेगरी बनाई कि जो उन्होंने कह दिया कि जो आपके डे केयर हैं ये अपने आराम से स्कूल में जाएं, और जो आपके 9th तक हैं वो भी स्कूल में जाएं, लेकिन जो कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटीज हैं ये थोड़े से यानी डिफरेंस होता है, वो घर में बैठ के ऑनलाइन उनकी क्लासेस होंगी। और फिर उन्होंने कहा जो मिसाल के तौर पे जो थोड़े से सीनियर हैं 60+ हैं, जो 70 हैं, यानी वो घर में रहें, और उनको बकायदा यहाँ तक भी दे दिया है कि वो सैनिटाइजर वगैरह वो बिल्कुल वो ले सकते हैं, फ्री ले सकते हैं, ये भी मसला मतलब है आ गया। तो ये उन्होंने बकायदा एक हर चीज का एक सिस्टम तरीके से लेके गए हैं, और रोजाना आकर आपको बताया कि मिनिस्टर हो गए, और थिग्नेल आपको बता आजकल बड़ा मशहूर है जो स्वीडन का और डॉक्टर है, जो वो आके मतलब है हर रोजाना आके मतलब है हमें वो करता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था और बताता था कि आज दिन में क्या हालात है, आज दिन में क्या हालात है। तो सबसे ज्यादा जो हालात जो है वो जो खराब है वो है स्टॉकहोम में। तो आज भी आपको मैं जरा मतलब आपको बताता जाऊं कि नॉर्वे में कि बंदे अगर मिसाल के तौर पे आप तो ये इसमें समर आ गया, तो नॉर्वे ने भी अभी तक स्वीडन को फुल मतलब है आप लोगों को नहीं, वो नॉर्वे ने भी स्वीडन वालों वालों में कहा है कि सिर्फ कोने के लोग यानी जो माल्मो हो गया, लुंड, हेल्सिंबोरी, ये जो स्कोने के लोग हैं ये सिर्फ नॉर्वे जा सकते हैं, बाकी आपने इसी तरह स्वीडन, डेनमार्क ने भी ऐसे ही किया कि स्टॉकहोल्म के लोग ना आए हमारी तरफ, नॉर्थ स्वीडन के लोग ना आए, यानी वो आए सिर्फ स्कोने के भी कुछ ले आ सकते हैं। फिर वो आ गया था कि एड्रेस कैसे पता लगेगा कि स्कोने में है या ये रहता है बंदा, या ये स्टॉकहोल्म में रहता है या मालमो में रहता है। तो उन्होंने कहा कि टैक्स ऑफिस एक वो लेके आए, कागज लेके आए। लेकिन मुझे वैसे ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि अभी डेनमार्क ने भी खोल दिया, लेकिन अभी तक भी कंडीशंस हैं कुछ, ये भी मुझे है इंफॉर्मेशन। जी
1: तो कोई मालमो में कोई डेमोस्ट्रेशन भी हो रही है यहाँ जो है डेमोस्ट्रेशन कश्मीर के हवाले से, कोई मालमो भी डेमोस्ट्रेशन हो रही है?
0: नहीं जी, हम इतने तो नहीं है, लेकिन ना मुझे बिल्कुल, हमें ये बात पता है कि 15 अगस्त को हमारे जनाब राजा साजिद साहब हैं, जो माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं और कश्मीरियों के लिए हमेशा उनके हक में बात करते हैं, और माशाल्लाह बड़े, मैंने उनको मतलब है वो हमेशा, और वो उनकी बहुत अच्छी एक चीज मैंने उनको देखा कि वो हमें हमें भी साथ मिलाते हैं, मतलब है वो हमें मालमो वालों को स्पेशली जो पाकिस्तानी है उनको भी कहते हैं कि आप भी आए, और हम, और मैंने लास्ट टाइम भी देखा था कि इंडियन अम्बेसी के सामने 15 अगस्त को जब उनकी एक इंडिपेंडेंस डे होती है, और वो वहां पर जाके उनके सामने एक स्पीच करना, लोगों को जमा करना, एक इनिशिएटिव बनाना, और बकायदा वहां पर मतलब है एक एक प्रोटेस्ट करना, और ये, और वो आपको पता है मीडिया में आता है, वहाँ डेनिश मीडिया आपकी इसको वो कवर करती है, न्यूज आते हैं, पाकिस्तानी मीडिया आती है, और स्पेशली जो हमारे यूथ हैं यहाँ पर, जो डेनिश पाकिस्तानी है, स्वीडिश पाकिस्तानी है, जो बच्चे हैं उनको भी वो होता है इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्या चल रहा है, ये चीज उनके वो, यानी जबरदस्त, मैं उनको खराज तहसीन पेश करूंगा जनाब राजा साजिद साहब को, कि उनकी यानी बहुत बड़ी एफर्ट है ये वाली। और मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर का इशू अब ह्यूमैनिटी का इशू हो गया, ये अभी कोई इसमें ये नहीं हो, ये दुनिया की सबसे बड़ी जेल है। अगर आप कंपेयर करें ना इस इशू को फलस्तीन के इशू से, तो ये कश्मीर का इशू फलस्तीन इशू से बहुत बड़ा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा बस आ जाता है कि फलस्तीन में मस्जिद अक्सा है, वहां रिलीजन का वो है हमारे लिए, बिल्कुल वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कश्मीर में आप देखें एक ज्यादा फलस्तीनी इतने नहीं है, तकरीबन 9 मिलियन लोग हैं जी, वो वहां पर उन्होंने डबल लॉकडाउन किया हुआ है। एक तो लॉकडाउन उन्होंने 5 अगस्त को किया था 2019 में, और दूसरा लॉकडाउन ये कोविड-19 की वजह से उनको वो मिल गया। और रोजाना हम टीवी पे देखते हैं कि कितने जो बेचारे हमारे नौजवान हैं, कभी कोई टीचर वहां से उठता है, फ्रीडम फाइटर कोई बेचारा, कोई वहां पर कोई कोई यानी स्टूडेंट्स उठता है, कोई मतलब है ये यूथ उठ रही है वहां पर, और वो क्या करते हैं, वो बेचारों उनको शहीद भी कर देते हैं, और फिर उनकी लाश उन्हें वापस भी नहीं करते। मैं रिसेंटली जब एक बहुत बड़ी एक पिक्चर कश्मीर से आई थी, जब इस बेचारे के नाना को शहीद किया गया, और वो उस बच्चे को तो समझ नहीं है कि उसे गोली लगी, उसके पेट पे वो बेचारा बैठ जाता है, क्योंकि वो बच्चा अपने आप को महसूस यही करता है कि नाना के साथ मैं रहूं, और वो तस्वीर उतरती है। और फिर बाद में एक और हमने वो सोशल मीडिया पे देखी कि इंडिया मीडिया, इंडिया वाले फौज उसकी उसके पेट पे पैर रखकर और वो बात कर रहे, कितनी बड़ी एक इंसानियत है। मैं कहता हूँ यहाँ पर किसी आप जानवर को इस तरह मतलब है बाहर निकल के आप उसको इस तरह करें जगह पर, मैं कितने लोग खड़े हो जाएंगे, वो तो फिर भी इंसान है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो 15 अगस्त में इंशाल्लाह हम भी यहाँ से बहुत से मतलब है शुरू करेंगे, और कर भी रहे हैं, इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं 15 अगस्त को, और मेरी ये रिक्वेस्ट भी होगी इंशाल्लाह कि जितने भी पाकिस्तानी स्पेशली, और साथ अपने लोकल भी लाएं, यानी अगर डेनिश है वो भी साथ लाएं, और अगर स्वीडिश है या कोई भी हो यानी वो भी साथ लाएं, और डिमोन्स्ट्रेशन करें। मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली है 15 अगस्त 9:30 बजे इंडियन एम्बेसी के सामने कोपनहेगन के अंदर, तो वहां पर बिल्कुल भरपूर तरीके से अपनी वो कराएं, और जो है राजा साजिद साहब उनका माशाल्लाह बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, और हमारे बिल्कुल मालमो पाकिस्तानी हम उनके बिल्कुल भरपूर उनके साथ हैं। जी
1: कामरान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा।
0: इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया राजा साहब, बहुत शुक्रिया। सोना है सर,
1: समान ये थे कामरान कुरैशी जो के मालमो स्वीडन की फजाओं से बात कर रहे थे। ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, बड़े काबिल हैं, ये ऑनरेडी मजिस्ट्रेट भी हैं जो کورٹ میں بیٹھتے بھی ہیں باقاعدگی سے جو ہے. اس کے علاوہ اپنا پیشے کے لحاظ سے وہ انجینئر ہیں, گیس میں کام کرتے ہیں, بڑا اچھا ہے ان کا سوشل ورک بھی, بڑی ہمت ہے ان کی کہ اتنا ٹائم یہ نکالتے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے, سوشل کاموں کے لیے. تو یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ اپنے وطن کے لیے, اپنے ملک کے لیے, جس ملک میں رہتے ہیں اس کے لیے بھی, اور باقی بھی جو ہے اپنے کام کرنے چاہیے. سمجھنا, ہمارے ساتھ ساتھ رہیے, اگلے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں.
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے. Yeah.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: सामने इस वक्त चौधरी शौकत साहब जो के काफ लीग के सदर हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। चौधरी साहब खुश आमदीद।
2: जी बहुत मेहरबानी राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक।
1: खैर मुबारक चौधरी साहब। पहले सबसे पहले तो आप अपनी तबीयत के बारे में बताएं।
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है कि मैं तो अब इंशाल्लाह जो है ना पूरी तरह सेहतयाब हो गया हूँ। आपको पता ही है, आपके साथ भी था 2-3 दिन पहले, तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने सेहत दी है, दोस्तों की बहन भाइयों की दुआओं से तो अल्लाह पाक का बहुत करम है।
1: चौधरी साहब आप कोरोना वायरस के हवाले से कोई अपना, जिन लोगों ने इस तरह के इस प्रोसेस से गुजरे हैं, जिनका ऑपरेशन हुआ है, उनको कोई मैसेज देना चाहें आप?
2: हाँ बिल्कुल, ये है कि सबसे पहले एहतियात सबसे बहुत जरूरी है। आप अपना फासला पब्लिक गैदरिंग में बहुत ज्यादा ना जाया करें, कम जाया करें, और जाए भी तो अपना मास्क वगैरह ये इस्तेमाल करें और जो है अपना फासला रखें। हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस्लाम तो वैसे मुंह से भी हो जाता है, तो आपको पता है कि ज्यादा कोई पता नहीं होता कि इस भाई को कुछ ये कोई जो है ना क्या कहते हैं कि बीमारी लाग है या नहीं है या जो हो सकती है, तो आप अपनी एहतियात बहुत जरूरी है। जो खासकर बुजुर्ग लोग जो है जिनको ये शक है या कमजोर है या हो सकता है या हो सकती है, या जिनको जैसे मुझे मेरी तरह ऑपरेशन जिन्होंने करवाया है, तो एहतियात करें। सबसे बहुत जरूरी है कि एहतियात, अपनी सेहत का ख्याल रखें, फासला रखें और मिलना जुलना बहुत कम रखें।
1: ये बड़ी अच्छी बात की। जो सब चूंकि आप सियासतदान भी हैं तो एक आध बात सियासत पर भी कर लेते हैं। जो सब आप एक अपोजिशन जमात में पहले थे, उसके बाद आप हुकूमत में गए और अब फिर आप अपोजिशन की बातें कर रहे हैं, क्या बात है? ये हुकूमत तब्दील तो नहीं होने जा रही?
2: राय साहब जहाँ तक मेरी पार्टी का तल्लक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ हैं। जैसे कि हमारे लीडरान ने भी हमेशा कहा है कि हम इनका पूरा साथ देंगे, 5 साल पूरे करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो कि काम कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट में होते हैं, तो वो उनकी निशानदेही करना फर्ज बनता है उस पार्टी का, जो उन पे फर्ज भी हो जाता है कि वो हुकूमत को बावर करवाएं कि ये मामला जो है ना गलत सिमत में जा रहे हैं, इसको इस तरीके से आप जो है ना लेके जाएं। तो ये कुछ लोग होते हैं, कुछ अनासर होते हैं जो कि इसका तजिया किसी और तरीके से करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी पार्टी उनके साथ है, गवर्नमेंट के साथ है इंशाल्लाह। अभी तक वो जो है ना हम उनके इतादी हैं और उनका ही साथ देंगे। तो खुद कैसी गलतियां होती हैं, ऐसी जो कोई पॉलिसियां होती है जिनको जिनकी निशानदेही करनी बहुत जरूरी हो जाता है कि पार्टी के लिए भी, जैसे बेशक वो तादी हो जो भी हो, तो उनका बनता है कि जैसे मजहब के इस्लाम के लिहाज से काफी चीजें जो है ना चौधरी परवेज लाई साहब ने निशानदेही की जो है ना वो उनको उजागर किया, तो ये फर्ज बनता है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनको कहें कि ये मामला जो है ना इस तरीके से जा रहे हैं, जो कि कम्युनिटी के मसाइल हैं, जो कि पाकिस्तानी अवाम के मसाइल हैं, हम उनके ऊपर हमें ज्यादा जोर देना चाहिए, हमें उनको हल करना है, पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देनी चाहिए, तो ये तो हमारा फर्ज बनता है और इंशाल्लाह हम उनके साथ ही हैं और साथ उनका देंगे।
1: लेकिन आप एक तरफ साथ भी हैं तो दूसरी तरफ आप पर जो आपकी हुकूमत चौधरी बरादरान पर जो नायब के जो 20-25 साल पुराने मुकदमा थे दोबारा खुलने जा रहे हैं, तो आप खाली सियासी बयान होता है कि हम हुकूमत के साथ हैं, वैसे आप साथ नहीं है हुकूमत के?
2: नैब के केस जो राज साहब आपको पता है, ये तो अभी तो नहीं है, ये तो पहले के है ना, तो पहले को कितनी दफा हमें क्लियर किया, हमारी पार्टी को नैब ने क्लियर किया, क्लियर चिट भी दे दी, साफ उनका कोई एलिगेशन भी नहीं लगाई है, कुछ भी नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर दोबारा ये हो गए, तो ये तो नैब को चाहिए कि अगर जब कुछ केस क्लियर हो जाते हैं तो उनको दोबारा फिर वो अंडर प्रेशर पार्टी को लाना, लोगों को लाना, तो ये तो कोई नामनासिब बात है ना। तो जो अगर नैब के केस है तो इंशाल्लाह हम उनकी फाइट करेंगे, पहले भी हम फाइट की थी, हम इंशाल्लाह हम अब भी फाइट करेंगे, हम अपने मसाइल जो है ना उनको हम जो हमारे केस है वो बिल्कुल इंशाल्लाह हम साफ है, क्लियर है हमारे केस इंशाल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो चौधरी बरादरान ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, दारों का एहतराम किया है, तो इसी तरह इंशाल्लाह हम आगे भी करेंगे।
1: लेकिन जो सब बंदा हुकूमत में होता है तो फिर हुकूमत में ही रहना चाहिए, या कितने पाकिस्तान में इतनी ज्यादा डेमोक्रेसी हो गया कि हुकूमत के रहते हुए अंदर भी तनकीद कर सकता है बंदा?
2: बिल्कुल राय साहब, ये तो हक इंसान का ना, पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियां हैं उनका ये हक बनता है, चाहे वो आतादी हो, चाहे वो अपोजिशन हो, जो भी हो, तो जो भी कोई गलत समझती है पार्टी के ये गलत है तो उसकी निशानदेही करना पार्टी का फर्ज बन जाता है, जो कि वो अपने नजरिए के मुताबिक अपनी सोच के मुताबिक समझते हैं कि ये जो मामलात है ये हमारे नजरिए के मुताबिक गलत है, तो चाहे गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो तो उसके निशानदेही करना फर्ज बनता है। तो वो हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह परवेज भाई साहब हमेशा अच्छे तरीके से, जो शुजा साहब अच्छे तरीके से वो जो है ना उजागर करते हैं उन मसलों को उन मसाइल को।
1: जो सब क्या ये बात मुस्लिम लीग नवाज की और मुस्लिम लीग काफ की ये एक ही अंदर जम होने जा रही है आपकी जमात, और ये मुआहदा हो चुका है कि वजीर आला जो पंजाब होंगे अगर केयर टेकर हुकूमत बनती है तो वजीर आला या तब्दीली आन हाउस तब्दीली होती है बुजदार साहब जाते हैं तो चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो वजीर आला पंजाब होंगे, आपको कोई अंदर की खबर दें आज?
2: राज साहब जहाँ तक अंदर की बात है वो तो मैं गायब का इलम तो नहीं जानता, लेकिन ये है कि आपको पता ही है कि इतना काबिल परवेज भाई साहब जो इतने काबिल इंसान है उन्होंने अपना वर्क पंजाब में करके दिखाया था अवाम को रिलीफ दी थी, पाकिस्तानी अवाम को जो उनके मसाइल असल मसाइल थे उनको उन्होंने उन पे काम किया था, तो उनका नाम आज तक परवेज भाई साहब का पंजाब में ये नाम आता है कि उनका रिकॉर्ड जो है ना हिस्ट्री में है। तो ये चौधरी परवेज भाई साहब को तो सभी एतमाद करते हैं, तो लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अभी उनके साथ कुछ मेरे इलम के मुताबिक तो कोई ऐसा अभी को लाए जो है ना एग्रीमेंट नहीं हुआ ना एक मुआहदा हुआ है ना कोई ऐसी बात हुई है। तो अगर नून वाले चौधरी परवेज भाई साहब पे आप इत्माद करते हैं तो वो समझते हैं कि परवेज भाई साहब उनमें ऐसी काबिलियत है इसके काबिल है, तो हम उनका शुक्रगुजार हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो समझते हैं। तो वक्त आने वाला वक्त तो वो उसी वक्त बात कर सकते हैं जब वो आएगा, फिर देखेंगे क्या होगा, अभी तो गवर्नमेंट के साथ हम तादी हैं।
1: तो सब एक हमारा यहाँ अकलौता मेंबर है पार्लियामेंट का मलिक सिकंदर सिद्दीक, और उसके बाद जो है जो हमें खबरें मिल रही हैं डेफिनेट आपके पास भी खबरें होंगी कि अगली दफा बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स आ रहे हैं, तो अब कम्यून की तरफ लोग लगता है कि ज्यादा तोजो नहीं दे रहे पार्लियामेंट के कैंडिडेट बनने की तरफ ज्यादा तोजो दे रहे हैं, आप क्या सियासी तजिया आपका क्या है?
2: राय साहब आपने कहा कि ये ज्यादा पार्लियामेंट की तरफ लोग ध्यान दे रहे हैं, असल में तो हमारे मसाइल पड़े हुए हैं कम्यून लेवल पे, हमारे बच्चों के हमारे जो मामलात है वो उधर से ही जो है ना हमने उनको हल करना है, जो के बच्चे हमारे आजकल जो के स्कूलों में जा रहे हैं बच्चे आगे आ रहे हैं, तो उनमें ज्यादा हमें कमून की तरफ ध्यान देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बंदे हमें कमून में लाने चाहिए, हमारे काउंसलर हमारे जो भी ये लोग हैं इनमें ज्यादा से ज्यादा ये शऊर पैदा करना है हमने लोगों में कि ये कमून के इलेक्शन में हिस्सा ले, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो पार्लियामेंट तो जाके कानून बनता है, जब कानून में मेजॉरिटी होगी तो उधर वो भी होगा, तो हमें पार्लियामेंट में भी हिस्सा लेना चाहिए, उसमें भी ज्यादा ज्यादा लोग जितने ज्यादा कानून में होंगे हमारे जितनी ज्यादा नुमाइंदगी पार्लियामेंट में भी होगी, ये पाकिस्तानी जो हमारे जो मसाइल है वो ज्यादा ज्यादा होंगे तो ज्यादा तरीके से मुतहद होके जो है ना वो हमारे मसाइल हल करवाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा जो किरदार अदा करना चाहिए कानून में भी और पार्लियामेंट में भी, ऐसे ही जो ज्यादा ज्यादा हिस्सा ले लोग हमें खुशी होगी।
1: चले आपने बड़े दिलचस्प बात की और आपने बड़ा अच्छा बात की कि कम्यून में हमारे मसाइल पड़े हुए हैं, और ये बड़ी अच्छी बात आपने की है, बड़ी अच्छी तरफ आपने तो जो मबजूल कराई है। तो साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया
2: जी, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया राय साहब,
1: इंशाल्लाह
2: रहेगा
1: इंशाल्लाह जी। सामाइन ये थे चौधरी शौकत साहब जो कि एक बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात की, हुकूमती लेवल पर जब उनसे सवाल किया गया उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि वो अपोजिशन में नहीं है, लेकिन साथ ये भी मान गए कि अपोजिशन में, और ये भी मान गए कि हम जमहूरियत पसंद है तो जमहूरियत के साथ चलते हैं, और मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है और इसी तरह होना चाहिए, और जो है हुकूमत में रहते हुए भी अगर कोई बंदा तनकीद करता है तो उसको दाद देनी चाहिए आज के दौर में, अगर पाकिस्तान में कोई तनकीद करता है तो।
0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

अंदर जाके फिर दोबारा अमेरिकन हाई कमीशन के ऊपर हमला किया है, अमेरिकन जो वहां ग्रीन जोन के अंदर अमेरिकन बेस है उसको तबाह किया है, अफगानिस्तान के अंदर धमाके किए गए हैं, तालिबान ने इस कदर वहां तबाही मचाई है किसी कोई इसका जिक्र नहीं कर रहा। तुर्की जो है 10 किलोमीटर तक कुर्दों का इलाका फतह करता हुआ इराक के अंदर घुस चुका है, नहीं कोई बता रहा। तुर्की ने उर्दन के ऊपर हमला किया हुआ है, तुर्की ने शाम के अंदर घुस के उन ताकतों को सैबोटाज किया है जो कि दाइश को मदद वहां पहुंचा रहे थे, जो कि अमेरिका को मदद वहां पहुंचा रहे थे, कोई उसका जिक्र नहीं कर रहा। तैयब अर्दोगान तुर्की इस वक्त मुसलमानों का लीडर बन के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इस वक्त जंग कर रहा है, हालत जंग में है, कोई उसका नाम नहीं ले रहा है। ईरान ने चाइना के साथ हाथ बढ़ाए हैं और उसमें चाइना की मेहरबानी है, चाइना ने आगे कदम बढ़ाए हैं, चाइना ने जहां जाके वहां ईरान के अंदर बैठ के जाके $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के MOU साइन कर लिए हैं। आज ईरान ने चाइना की बात मान के, आज तक वो बात कभी उसने पाकिस्तान की नहीं मानी थी, जो आज उसने चाइना की बात मान ली है। ईरान आज इराक के साथ सुलह करने के लिए तैयार हो गया है, ईरान आज तुर्की के साथ सुलह करने के लिए तैयार हो गया है, ईरान आज सऊदी अरेबिया के साथ सुलह करने के लिए तैयार हो गया है। पाकिस्तान के जो मशवरे थे आज उसके ऊपर अमल करने का वक्त आ गया है। चाइना ने इंडिया के साथ जब मामला खराब हुए, इंडिया के साथ जब जंग छिड़ी, इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करके उनके इलाके के अंदर घुस के कई किलोमीटर अंदर जाके उसके इलाके पे कब्जा कर लिया, इंडिया की दौड़ें लगी। इस वक्त मैंने आपके प्रोग्राम तकरीबन हर प्रोग्राम में मैंने बताया था कि जब वक्त आएगा तो श्रीलंका भी उठेगा, जब वक्त आएगा तो मालदीप और नेपाल भी उठेगा, आज वो वक्त आ गया है। नेपाल ने बाकायदा तौर पर इंडिया के खिलाफ जो ना वो खड़ा होकर साबित कर दिया है। नेपाल की आवाम इस वक्त जो है बच्चा इंडिया के खिलाफ हो रहा है, मालदीप ने उसके खिलाफ बयान दे दिए हैं, श्रीलंका उसके खिलाफ खड़ा है, चाइना सीधा उठ के गया है नॉर्थ कोरिया के पास। नॉर्थ कोरिया ने के सदर ने और चाइना के सदर ने दोनों ने डिनर करने के दौरान ही, मुलाकात के दौरान ही ऐलान कर दिया नॉर्थ कोरिया की तोपें, नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर मिसाइल इस वक्त इंडिया और अमेरिकन और इसराइल के जो बेस जहां जहां जिस जहां जहां जा वो टारगेट कर सकता है उसकी तरफ उसने उसी वक्त मीटिंग के दौरान ही उसने ऑर्डर किया कि ये सारे रुख मोड़ दिए जाए। क्यों इस वक्त इन बातों को डिस्कस नहीं किया जा रहा, क्यों हम लोगों को सांप सूंघ गया है, क्यों इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया को सांप सूंघ गया है, क्यों इस वक्त ये बातें नहीं की जा रही, क्यों नहीं बताया जा रहा कि इस वक्त मुस्लिम दुनिया के अंदर क्या क्या क्या क्या क्या क्या रद्दबदल आ रही है, क्यों इस वक्त जो थर्ड वार्ड जो होनी है, जो थर्ड वार्ड के जो आसार है, जो सिम्टम है, वो ऑन ग्राउंड इस वक्त बाकायदा तौर पर हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं बाकायदा सऊदी अरेबिया के अंदर, रियाद के अंदर, जद्दा के नजदीक तक भी मिसाइल जो फेंके गए, क्यों उनका जिक्र खैर किया गया, क्यों उसके बारे में मीडिया नहीं बोला। आपके सऊदी अरेबिया के मैं पिछले 4 प्रोग्राम में मैं बार बार बोल रहा हूं कि सऊदीया के शाही खानदान का क्या बुरा हशर कर दिया गया है, उसके 50 शहजादों को क्यों मर्डर कर दिया गया, और अगर ये खबर गलत है तो वो 50 शहजादे बोलते क्यों नहीं है। शहजादा इस वक्त जो वलीहद है, शहजादा जो उसकी 2 महीने 2.5 महीने के बाद ये 3 दिन पहले उसकी खबर रिलीज की गई कि उसकी हालत नासाज है, तबीयत नासाज है, वो इस वक्त जेरे इलाज है। 2.5 महीने उसकी खबर क्यों नहीं निकले दी गई, और अगर वो जेरे इलाज था तो कहाँ जेरे इलाज था, अगर उसको बीमारी कोई है तो क्या बीमारी है। कतर टीवी ने और ईरान टीवी ने सऊदी वलीहद के मर्डर होने की खबर क्यों दी थी, ये सारी खबरें क्या राजा साहब को डेनमार्क में बैठे हुए राजा साहब के रेडियो के लिए सुनने वाले बेशुमार मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को क्या ये सुनाई नहीं देती, क्या उनकी तवज्जा उसकी तरफ नहीं होनी चाहिए, क्या वो डिग आउट नहीं कर सकते। तो जनाब यही वो जरूरी बात है जो आपको डिग आउट करनी है, जो आपको सुननी है, जो आपको निकालनी है। इन मालूमात को अगर आपके पास नहीं है तो आप यकीनन सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को बुरा भला, इमरान खान के लिए सच्चे और झूठे नारे लगाते रहोगे, या वाइस वर्सा मैं ये करता रहूंगा। लेकिन ये वो जुल्म है जो हमारे साथ, हमारी आवाम के साथ, हमारी नौजवान नस्ल के साथ कर दिया गया है, हमारे साथ ये जुल्म हमारी नौजवान नस्ल को तकसीम करके कर दिया गया है, हमारे साथ ये जुल्म हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को तकसीम करके कर दिया गया है। ये जुल्म नहीं है, ये जुल्म शदीदा है, और हम हंसी खुशी बड़े ही मासूमाना तरीके से हंस हंस के उल्टे सीधे बयानियां बना के, उल्टे सीधे फेसबुक के सोशल मीडिया पर पोस्टर बना के हम बड़े खुश हैं, एक दूसरे को गाली निकाल के, एक दूसरे को जिच करके, एक दूसरे के खिलाफ

0: फूट बोल के। ये जुल्म ज्यादती जो हो रही है, हमें देखना है कि हमारे हमारे ये इतने मुस्लिम दुनिया के ममालिक को तबाहो बर्बाद करने के बाद अगला मुल्क किसकी बारी आ रही है, ये साजे अगला मुल्क किसकी तरफ जा रही है। आज चाइना ने तुर्की का साथ देने का अहद कर लिया, आज चाइना ने ईरान का साथ देने का अहद कर लिया, आज चाइना ने बाबांगे दोहल कह दिया कि मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं, जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। आज इस वक्त जो चाइना कॉरिडोर पाकिस्तान से जो निकलना था, उसकी जो तरक्की को, उसके जो मंसूबों को रोक दिया गया, आज भी चाइना उन्हीं मंसूबों के ऊपर दोबारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, दोबारा उसको चलाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। उसने अभी भी बयान दिया है, हम एक लश भी अपना तब्दील नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान के साथ मदद के लिए अपने उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए एक लश एक प्रोजेक्ट भी हम चेंज नहीं कर रहे। लेकिन आप लोगों को देखना ये है, आप लोगों को समझना ये है कि क्या हमारे मुल्क वतन अजीज सरजमीन, उसके अंदर मौजूद इस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट और इस मौजूदा गवर्नमेंट को लाने वाले वो ताकतें, वो सोर्सेज, वो खलाई मखलूक जो कि बैनुल अक्वामी है, और वो फैक्टर्स जो कि हमारे इंटरनल मामला को लेके बैठे हुए हैं, कलमदान संभाल के बैठे हुए हैं, हमारी इंटेलिजेंसिया, हमारी आर्म फोर्सेस, क्या उनको ऐसा ही करना चाहिए? और अगर ये कोई गलती हुई है तो कम अज कम मैं पाकिस्तानी हूं, आप पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के बारे में बोल रहे हैं, तो हमें फौरी तौर पे हमें रिकनसाइल करना है, रिकंसिडर करना है, हमें उन गलत फैसलों को दोबारा फौरी तौर पे रद्द करके, कैंसिल करके, खत्म करके, हमें फिर दोबारा जो असल सही पॉजिटिव फैसले हैं वो दोबारा करने हैं। और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जहां जहां तब्दीलियां पैदा हो रही हैं, जहां जहां तब्दीलियां हो रही हैं, तैयब अर्दोगान के दौरा पाकिस्तान के बारे में मैं आपके पिछले एक प्रोग्राम में बात कर चुका।
1: शाकिर साहब, ये कोरोना वायरस का फेज 2 है, इस बारे में क्या कहेंगे आप, ये क्या है?
0: जी, मैं बिल्कुल कोरोना वायरस का आपका बड़ा अहम अहम अहम नुकता है, और इस वक्त कोरोना वायरस बहुत तेजी के शिद्दत के साथ, मैंने आपको बताया था कि जुलाई के एंड पे इसका फेज 2 स्टार्ट होने वाला है, जुलाई के एंड गुजर गया, ये अगस्त के 2-3 दिन शुरू हो चुके हैं, और लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूँ, फेज 2 जो कोरोना वायरस का है वो बड़ी ही शिद्दत के साथ, बड़ी ही शद्दोमद के साथ, तेजी के साथ एकदम आपके सामने खड़ा होने वाला है। आज मैं बरतानिया से बैठा बोल रहा हूँ, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने कल, जबकि जिस दिन ईद का दिन था, कल उसने दोबारा फिर अनाउंसमेंट की है, हमें यहाँ जो लॉकडाउन में जो नरमियां की गई थी वो दोबारा कैंसिल होने जा रही हैं। आज यहाँ फिर ग्रेटर लंदन का जो मेयर है वो फिर दोबारा परेशान है, हमारे ट्रेवलिंग के ऊपर, हमारे मिलने मिलाने के ऊपर, हमारे कारोबारों के अंदर फिर दोबारा से सख्तियां शुरू होने वाली हैं। पाकिस्तान के अंदर एकदम से 2 दिनों के अंदर एकदम से फिर दोबारा बूस्ट कर क्या है, इंडिया में मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में कहा था, ये 7-8 वो मुल्क हैं जिनको इंतहाई मिजरेबल दिखाया जाएगा, इन 7-8 मुल्कों के अंदर इंतहाई बुरे हालात कोरोना के पैदा किए जाएंगे, फिर दोबारा बेशुमार मौतें वाकया होंगी, 1.25 करोड़ के लगभग ये ऑन द रिकॉर्ड ले आए हैं कोरोना पॉजिटिव लोगों को, इन्होंने इंशाल्लाह आइंदा 2 या 3 महीनों में इस फिगर को 2 करोड़ करना है। ये मेरी बात आप भी और आपके सुनने वाले भी नोट कर लें, ये जो इनकी इनका जो एक सेट प्लान है, वो सेट प्लान के अंदर 1 मिलियन लाशें इन्होंने दिखानी है कोरोना की, और 2 करोड़ अफेक्टेड लोग इन्होंने दिखाने हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे जो इस वक्त कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो चुके लोग हैं, और इसी कोरोना पॉजिटिव के सेकेंड फेज के अंदर बिहाइंड द सीन, ये जो मैं जिन जंगों की तरफ मैंने इशारा किया है, जो सऊदी अरेबिया के अंदर ईरान, तुर्की, उर्दन, शाम, ये लीबिया, इराक, ये अफगानिस्तान, और सो पाकिस्तान और इंडिया, कश्मीर, ये इन तमाम इलाकों के अंदर ये जो थर्ड वार्ड के आसार शुरू हो चुके हैं जनाबे अली, इस सिलसिले के अंदर बहुत सारे बड़े मुल्क जो हैं, बहुत सारे बड़े मुल्क वो अमेरिका के खिलाफ हो चुके हैं, शदीद खिलाफ हो चुके हैं। अमेरिका के अंदर इस वक्त बम धमाके हो रहे हैं, वहां दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, उनको छुपाने पड़ रहे हैं, उनका अपना प्रेसिडेंट का इलेक्शन इस वक्त जो है वो जेपरडाइज हो चुका है, वो कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो चुका है, उन्हें खुद समझ नहीं आ रही है कि हमारे आइंदा आने वाले इलेक्शन में क्या होने वाला है, हमारा मुस्तकबल क्या है। उस वक्त डिस्कशन ये हो रही है कि रशिया के अंदर बैठ के साइबर क्राइम के जरिए उनके उनके हेर फेर कर देता है उनके इलेक्शनों के अंदर। जी, इस वक्त अमेरिका को मुंह की खानी पड़ेगी, पड़ रही है। चाइना ने बगबांगे दोहल खड़ा होने का ऐलान कर दिया है, चाइना ने हर उस मुल्क का साथ देने का मुसम्मम इरादा कर लिया है कि जो इन ताकतों को आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं। जर्मनी ने मुखालफत कर दी है बाकायदा तौर पर। जर्मनी का इस वक्त टॉप के ऊपर चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका के साथ, नहीं बता रहे हैं आपको ये लोग। ट्रंप का और मर्कल का इस वक्त आपस में चपकलश चल रही है शदीद किस्म की, और ये शदीद मुखालफत जो है ये यूरोप के सिर्फ एक मुल्क की नहीं है, सिर्फ जर्मनी की नहीं है, और जर्मनी नवाज जितने भी दो चार या पांच मुल्क हैं यूरोप के अंदर, वो सारे के सारे जर्मनी का साथ देंगे। आपको वादे तौर पर मैं पहले भी बहुत दफा बता चुका हूँ, आज फिर एक दफा दोहरा देता हूँ, रशिया इस सारे ब्लॉक की पूरी फुल सपोर्ट करेगा, वो कभी भी अमेरिकन ब्लॉक की इसराइल ब्लॉक की सपोर्ट नहीं करेगा। रशिया की और तुर्की के आपस में दोस्ताने शुरू हो चुके हैं, उनके बिहाइंड द सीन इस वक्त शेक हैंड होने शुरू हो गए हैं। रशिया के और तुर्की के जो आपस में मिसाइल थे जो कि वहां शाम की जंग की वजह से खड़े हो गए थे, वो इस वक्त हल हो रहे हैं। कतर जो है वो पॉजिटिव फुटिंग पे आ गया है। कुवैत जो है वो दोबारा शामिल होना चाह रहा है मुसलमान ब्लॉक के अंदर। तो ये सारे पहलू जो हैं, क्या हमें आंखें बंद करके सिर्फ एक दूसरे को कुत्तियां कुत्तियां करके हमें जाया कर देने चाहिए? बिल्कुल नहीं। हम पाकिस्तान इस वक्त कुर्रा अर्ज के ऊपर जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जो उम्मत मुसलमा है, और जो मुस्लिम ममालक के जो मुल्क है 51-52, उन मुल्कों के अंदर हम टॉप ऑफ द लिस्ट मुल्क हैं। तैयब उर्दगान ने पाकिस्तान की आवाम की, पाकिस्तान की कौम की, पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया की, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की, और पाकिस्तान के एटॉमिक पावर की इस कदर उस शख्स ने, उस कौम ने तारीफ की है, हमें खुद अपनी तारीफ के बारे में पता नहीं है। तैयब उर्दगान ने आया सूफिया के अंदर जुमा पढ़ा, और उसके बाद जो उसने अनाउंसमेंट की है वो गौरतलब है, और उसको अगर हम अपने आप को मुस्लिम उम्मा का हिस्सा नहीं समझते हैं, मुसलमान नहीं समझते हैं, तो रद्द कर दो तुर्की को, रद्द कर दो तैयब उर्दगान को, रद्द कर दो खराफत राशिदा को, रद्द कर दो सल्तनत उस्मानिया को। और अगर आप मुसलमान हैं, अगर आपका कुरान के ऊपर यकीन है, अगर आप अल्लाह को एक मानते हैं, अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके आखिरी नबी हैं, तो आपके ऊपर फर्ज है, आपके ऊपर वाजिब है कि आप खड़े हो जाएं, आपकी नियत जो ना वो बांध लें और मुंह तरफ किबला शरीफ कर लें, आपके किबला के खिलाफ, आपके मक्का और मदीना के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं उनको पहचानिए, उनकी तरफ नजर उठाइए, उनके खिलाफ होने वाले फैसलों के खिलाफ खड़े हो जाइए। तैयब उर्दगान पाकिस्तान का बार बार बार बार जिक्र क्यों करता है कि ये सारी दुनिया को पता है कि दुनिया के इस हिस्से में एशिया, जनाब अली आपके सुनने वालों को अगर आपके पास वक्त हो तो मैं दो मिनट में आपको एशिया के अंदर, एक दुनिया के अंदर जो हमारी मुस्लिम उम्मा की जो तादाद है, जो हमारी पॉपुलेशन है, उसके अंदर दो स्प्रिंग हैं, एक एशिया स्प्रिंग है, एक अरब स्प्रिंग है। अरब स्प्रिंग के सारे मुल्क इकट्ठे कर लो, सारे मुल्क इकट्ठे करके उसकी आबादी काउंट कर लो तो इंडोनेशिया, मलेशिया या पाकिस्तान के बराबर बनती है। लेकिन जो एशिया स्प्रिंग है जिसके अंदर बेशुमार मुल्क हैं, उनकी बेबहा आबादी है, उस बेबहा एशिया स्प्रिंग के अंदर जितने भी मुल्क हैं, मुस्लिम मुल्क हैं, उनको लीड करने वाला मुल्क सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है पाकिस्तान। और याद रखिएगा, तुर्की एशिया स्प्रिंग में नहीं आता, वो एशिया स्प्रिंग में शामिल रहेगा, एशिया स्प्रिंग के साथ जुड़ेगा वो। तो ये जो ताकत बनने जा रही है, इस ताकत को देख रहा है रशिया, रशिया को पता है कि ये क्या ताकत बनने जा रही है, चाइना को पता है ये क्या ताकत बनने जा रही है, मगरब को पता है ये क्या ताकत बनने जा रही है। अगर पता नहीं है तो बदकिस्मती से हमें पता नहीं है, हम इस कदर बेवकूफी के समुन्द्र में डुबकियां मार रहे हैं, गोते मार रहे हैं। मैं आपके सुनने वालों को और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अगर 10 लोगों को भी सुन ले, 10 लोगों के दिल में भी असर कर दे, तो मैं समझता हूँ आपके प्रोग्राम की ये कामयाबी है। हमें बहसियत मुसलमान, बहसियत पाकिस्तानी और मुस्लिम उम्मा का एक खैर ख्वाह के तौर पे हमें खड़े होना है, बावकार तरीके के साथ खड़े होना है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ जब एक दफा आप खड़े हो गए, जब आपकी हाँ में हाँ मिल गई, जब आप लाइक माइंडेड हो गए, जब आपका सोचने का अंदाज एक हो गया, तो देखिएगा ये कुव्वत, ये कितनी बड़ी कुव्वत बन जाती है, ये कितनी बड़ी ताकत बन जाती है। हमें जो तकसीम दर तकसीम कर दिया गया है, उसकी वजह से हम रेजा रेजा हो चुके हैं। ये रेजा रेजा हुए जो लोग हैं, इनको इज्तमा की जरूरत है, इनको इकट्ठे होने की जरूरत है, इनको एक ही तरह सोचने की जरूरत है। और खुदा का वास्ता है, آپ وہ جو سازشیں جو ہوئی تھی خلافت راشدہ کو تباہی کی جو سبب بنی تھی، جو مغلیہ دور کے جو تباہی کا جو سبب بنی تھی، جو اسپانیہ کی ہماری جو مسلم قوت کا جو تباہی کا باعث بنی تھی، جو مسلمانوں کے تمام بڑے بڑے جو فاتحین تھے ان کی جو تباہی کا بس باعث بنی تھی، وہ تھی غداری، اور وہ تھی ہمارے جو امت کے مسلمان ان کے جو مخالف تھے، جو دشمن تھے، وہ غدار انہوں نے پروڈیوس کر دیا تھے ہمارے اندر، وہ خود گھس بیٹھے تھے ہماری شکلیں بنا کے، ہمارا لباس پہن کے، ہمارے چوگے پہن کے، ہماری تاریخ کو یاد کر کے، ہمارے قرآن کو یاد کر کے، ہمارے جیسی داڑیاں رکھ کے، ہمارے اندر گھس کے، ہمارے سسٹم کے اندر گھس کے، ہماری حکومتوں کے اندر گھس کے، اور ہمارے میڈیا کے اندر گھس کے ہمیں ذلیل و خوار کر رہے ہیں۔ آج اس وقت میرا دل آپ کا پتنی خون کے آنسو رویا کہ نہیں رویا؟ ساری امت کے ایک ایک شخص کا دل رونا چاہیے، خون کے آنسو رونا چاہیے۔ خانہ کعبہ کے اندر اس سال 2020 کا جو حج ہوا ہے، ذرا اس کے اوپر نظر تو چڑھائیے، وہ جو 10,000 لوگوں کو آرگنائز طریقے سے لائن میں لگا کر جو حج کروایا گیا ہے، جو حج کے لوازمات پورے کروائے گئے ہیں، جو صحیح کروائی گئی ہے، جو طواف کرایا گیا ہے، جو منا پہ لے جایا گیا ہے، آپ ان 10,000 لوگوں کے چہروں کے اوپر غور تو کیجیے، اور ان 10,000 لوگوں کے اندر کتنے لوگ ہیں جو غدار ہیں، کتنے لوگ ہیں جو دشمنوں نے اپنے اس میں داخل کر دیے گئے ہیں، اور وہ چپا چپا وہ اس وقت آپ کا جو بلو پرنٹ ہے وہ بنا رہے ہیں سعودی عربیہ کا۔ راجہ صاحب، اگر آپ نے اور آپ کے سننے والوں نے ان باتوں کے اوپر غور نہیں کیا، تو یقین کیجئے وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کے بچوں کو آج سے بھی انتہائی برے حالات دیکھنے پڑیں گے، اور اگر آپ میرے پاکستانی بہن بھائی اس سے بھی برے حالات و واقعات اپنے ملک کے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی قوم کے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی نوجوان نسل کے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے آنے والے مستقبل کو دیکھنا چاہتے ہیں اور مسلم ماں کا دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر لگے رہو منا بھائی، پھر آپ کو منع کوئی نہیں کر سکتا، پھر آپ کو منع کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا، پھر تو سارا دشمن، جتنے دشمن آپ کے ہیں وہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ آپ اسی توڑ پھوڑ کا شکار رہو، آپ اسی آپس میں جھگڑتے رہو، آپ اسی طریقے سے ایک دوسرے کو ننگا کرتے رہو۔ اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو یہ بھی جان رکھیے، سعودی عربیہ کے ایک سابقہ انٹیلیجنس کے بہت بڑے افسر نے جو راز افشا کیے ہیں، جو مسلم امہ کے خلاف جاتے ہیں، جو سعودی عربیہ کے خلاف جاتے ہیں، جو ہمارے وطن پاکستان کے خلاف جاتے ہیں، ہماری افواج کے خلاف جاتے ہیں، ہماری ان پالیسیوں کی طرف جاتے ہیں جو کہ دشمن اسلام کے دشمنوں کی سازشوں کے خلاف ہم نے تیار کر رکھی تھی، وہ ایک شخص نے کسی کانفرنس میں وہ بیان کر دی ہیں۔ تو یہ وہ سارے وہ کام ہیں جو غدار اس وقت کر رہے ہیں، غداروں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے درمیان آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے ان غداروں کی بنائی ہوئی پالیسیاں آپ کے میڈیا کے ذریعے آپ کے گھروں کے اندر داخل ہو چکی ہیں، وہ میڈیا کا جو بیان کردہ زہر ہے، جو بیان کردہ جو تربیت ہے، جو بیانیاں ہے، آپ کے بچوں کے ذہنوں کو وہ مفلوج کر رہا ہے، دن بدن وہی کام آپ کے بچوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں جو آج سے 600 سال پہلے، 700 سال پہلے جو پیش آنا شروع ہو گئے تھے خلافت راشدہ کے ساتھ، جو اس وقت کے بڑے بڑے انتہائی بڑے بڑے جنگجوؤں کے خاندانوں کے اندر پیدا کر دیے گئے تھے۔ تو آج جس طرف ہم جا رہے ہیں، جس ننگ دھڑنگ ہم کیفیت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، تو کیا اس کے لیے اس وقت جو صاحب نظر ہیں، کم از کم وہ تو اٹھے، جو صاحب نظر ہیں وہ تو آنکھیں کھولیں، آنکھیں کھل جائے تو دیکھنے کے بعد، غور کرنے کے بعد، جائزہ لینے کے بعد بیان تو کریں ان معصوم لوگوں کو، اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے معصوم گھر والوں کو تو بتا دیں، وہ صاحب نظر، وہ اہل نظر، وہ اہل ذکر، وہ جو فکر کرنے والے لوگ ہیں وہ تو کم از کم کھڑے ہو جائیں، وہ اور کچھ نہ کریں، وہ کوئی تبدیلی نہ لے کے آئیں، اپنے گھر کے اندر جو معصوم نوجوان نسل ہے جو بھٹک رہی ہے، جو بلا وجہ اس گندے میڈیا کے جو پروپیگنڈا کے ساتھ لہک جاتے ہیں، ان کو تو کم از کم پیغام دے دیں جو صحیح پیغام ہے، جو اصل پیغام ہے۔ आपके टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के ऐसे ऐसे हराम खोर लोग हैं, एंकर पर्सन है आपके, ऐसे ऐसे मरदूद लोग हैं, वो आपकी इस्लाम की तारीख को मसख कर रहे हैं, वो आपके इस्लाम की तारीख के बड़े बड़े जो जो जो जो जंगजू थे उनके उनकी उनकी तारीख को, उनकी मालूमात को वो तबाह बर्बाद कर रहे हैं, वो गलत तरीके से बयान कर रहे हैं। कोई मुल्क और कोई कौम अपना वकार बढ़ा ही नहीं सकती है, किसी मुल्क का परचम सरबुलंद हो सकता ही नहीं है जो अपनी तारीख के शाहकार जो वाकयात हैं, जो हिस्ट्री है, उसके जो फतुहात हैं, जो उसको रद्द कर दे, जो अपने कायदीन के खिलाफ जो बकवास करें, जो अपने कायदीन के खिलाफ, जो अपने ममारे मुल्क और मिलत हैं, जो उनके खिलाफ बकवास करें। इन हराम खोरों की आंखों के अंदर दोनों उंगलियां क्यों नहीं घुसेड़ते आप? इनका गिरेबान पकड़ के इनके टेंटवे के ऊपर अपना गोडा क्यों नहीं रखते इसके आप? वो क्यों आपके टीवी के ऊपर बैठ के आपके घरों के अंदर दाखिल होके आपके घर वालों को क्यों क्यों क्यों क्यों, क्यों वो तबाह बर्बाद करते हैं उनकी सोच को? और मुझे उम्मीद है कि मेरे बहन भाई जो इस वक्त आपके इस रेडियो के जरिए सुन रहे हैं, मेरे वो बहन भाई हैं यार, मुझसे किसी चीज की मुखालफत करनी है तो कर लो, मुझे बुरा कहना है तो बेशक कह लो, कोई दिल में दो चार गालियां तो वो भी निकाल लो, किसी की मुखालफत में, किसी की हमायत में जो कुछ करना चाहते हो मेरे साथ बुरा सलूक कर लो, मैं हाजिर हूं, कर लो मेरे साथ जो बुरा सलूक करना है, लेकिन खुदा का वास्ता है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने मुल्क और कौम के लिए, मिल्लत के लिए, अपने परचम के लिए, अपने सरजमीन के लिए, उसकी सरबुलंदी के लिए भी तो कुछ सोच लो बराहे करम। आज ही अगर जो मैंने पॉइंट किए हैं, आज गूगल का जमाना है, इंटरनेट का दौर है, आपके पास सबके पास फ्री इंटरनेट मौजूद है, तो बराहे करम जो मैंने जिन जिन में लड़ाइयों का जिक्र मैंने आपके साथ किया है खोल लीजिए। अगर आपको जरा सा भी आपके दिल के अंदर दर्द है, अगर आपकी आंखों में किसी वक्त किसी की बात सुनकर कभी आंसू आते हैं, तो उम्मत मुसलमा की इस वक्त जो हालत है उसके ऊपर दो आंसू बहाइए, इंटरनेट पे जाइए, इन तमाम हालातों वाकयात को गौर से देखिए कि आखिर हो क्या रहा है, ये किस तरह हम बढ़ रहे हैं, किस तरह हम जा रहे हैं, हम क्यों अपने हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ के अपने ही पैरों को काटने के लिए क्यों हम मुसर हैं, क्यों हम अपने बच्चों के मुस्तकबल जो आज से सिर्फ 5 साल के बाद 10 साल के बाद मैंने भी मर खप जाना है। आप लोगों में से भी अक्सर जो मेरी बात सुन रहे हैं, कोई मुझसे पहले चले जाएंगे, कोई मुझसे थोड़े दिन के बाद चले जाएंगे, मर खप जाएंगे, जमीन के अंदर दफन हो जाएंगे, कीड़े मकोड़े खाएंगे हम सबको, लेकिन पीछे जो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों के बच्चे जो आने वाले हैं, उनको हम क्या जमाना देके जा रहे हैं, क्या जमाना उनको मिलने वाला है, जरा इसकी तरफ भी गौर कर लीजिए। आपको पीने के लिए कौन से मशरूबात चाहिए, वो पीने के बाद आपको कितना मजा आता है, कितना सुकून आता है कि नहीं आता है, वो मशरूबात आपको पसंद है कि नहीं पसंद है, आपको मगरब पसंद है कि आपको मशरक पसंद है, आपको आजादी पसंद है कि आपको इस्लामी तहजीब पसंद है, आपको सेकुलरिज्म पसंद है कि आपको इस्लामी तहजीब पसंद है, कुछ भी आप, लेकिन आप उसका नितारा तो निकाल लीजिए कि वो जो सेकुलर कर रहे हैं आपको, जो आपको सेकुलर करना चाहते हैं, उनका असल मिशन क्या है? वो जो लोग आपके बच्चों के हाथों के ऊपर ये प्ले गेम्स, ये वीडियो गेम, ये खून खून खवार कत्ल वगैरह के जो वीडियो गेम आपके हाथों में पकड़ा के आपकी नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, उनकी अखलाकियत तबाह कर रहे हैं, उनके जहनों को तबाह कर रहे हैं, क्या वही कत्ल वगैरह की वीडियो गेम उनके बच्चे खेलते हैं? जरा गौर कीजिए, यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर ये सारी मालूमात है, आपके बच्चों के हाथ के अंदर जो उरियानी है, आपके बच्चों के हाथ के अंदर ये ड्रामे और जो फिल्में हैं, आपके बच्चों के हाथ में ये प्ले स्टेशन और ये जो मार धाड़ की, कत्ल गारत की, खून खराबे की जो वीडियोज हैं, जो वीडियो गेम्स हैं, क्या ये सेम सारी की सारी चीजें उनके बच्चों के हाथ में भी हैं? अगर आप जरा सा गौर कर लें, शराब के नशे में रहने वाले लोग मुसलमानों, नफरत में और तकसीम के अंदर तकसीम हुए मुसलमानों, पाकिस्तानियों, मुख्तलिफ तरह के नशे में गिरफ्तार लोगों, जानियों, जना में गिरफ्तार लोगों, चर्स के नशे में गिरफ्तार लोगों, शराब के मुख्तलिफ जायकों में गिरफ्तार लोगों, शराब जिसकी शक्ल भी पेशाब जैसी है उसके रसिया लोगों, जरा ये गौर करो, تمہارے بچوں کو جو چیزیں پکڑا دی گئی ہیں، جو اوریانی، جو فحاشی، جو ننگی فلمیں، ننگے ڈرامے، اوریاں بات چیت، ہاں جی یہ واٹس اپ، یہ فیس بک، یہ سوشل میڈیا، یہ ویڈیو گیم جو آپ کے بچے اس وقت استعمال کر رہے ہیں، کیا ان کے بچوں کے ہاتھوں میں بھی وہ ہے؟ اگر مجھ سے سننا چاہتے ہیں تو نہیں ہے. میں یہاں رائے صاحب آپ سے اجازت چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین. میرا کام سچ بولنا ہے، آپ تک سچ پہنچانا ہے. مجھے کوئی سچ حق بات ملے تو میرا فرض ہے کہ میں آپ تک پہنچاؤں. میں وہی کام کر رہا ہوں. پاکستان ہمیشہ کے لیے پائندہ باد. ہم لوگ زندہ باد. راجہ صاحب آپ زندہ باد. اسلام پائندہ باد. پاکستان پائندہ باد انشاءاللہ. اور محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد.
1: سامعین یہ تھے شاکر قریشی صاحب جو کہ برطانیہ کی فضاؤں سے ہمارے ساتھ تھے.
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: तस्वीरें इसकी फड़का के लगा दी, फलाना फलाने को हार पहनाते हुए, फलाना फलाने के साथ नाश्ता करते हुए, फलाना फलाने को जूता पहनाते हुए, फलाना फलाने के साथ एयरपोर्ट पर खुशगप्पियां करते हुए, ना इस फलाने का पता है ना उस फलाने का पता है, दोनों का क्या किरदार है, दोनों ने ऐसा कौन सा तोप ऐसी चलाई हुई है जिसकी वजह से फलाना फलाने के साथ यहाँ पे अटैच होकर खबर की जीनत बन रहा है, ये है यहाँ का खबरों का मैार। तो जहाँ पे खबरों का मैार 50 रुपए की तस्वीर 100 रुपए की तस्वीर है, आप और मैं भी तस्वीर वाले को यहाँ पैसे देके कहेंगे अच्छा मेरी तस्वीर लगा दो। मेरा इतना इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जब हुआ यहाँ पे, एम्बेसडर साहब जब ये तशरीफ लाए, इन्होंने हक साहब यहाँ तशरीफ लाए, तो उस वक्त इन्होंने मेरी किताब की रुनवाई की थी, तो वो बाकायदा मुझे एक, हमारा नाम नहीं लूंगी मैं, टीवी के हमारे हैं नुमाइंदे, तो उन्होंने बाकायदा मुझे फोन करके कहा कि मुझे 500 यूरो देंगे तो मैं आपकी रिकॉर्डिंग जियो पे चलवाऊं, फलाने पे चलवाऊं, फलाने पे चलवाऊं। मैंने कहा 500 यूरो ये तो आपकी जिम्मेदारी है, किसी भी मुल्क में कोई प्रोग्राम हो रहा हो उसकी रिपोर्ट करना, स्पेशली जहां एम्बेसिडर आया हुआ है वहां पे प्रोग्राम करना, ये रिपोर्ट वहां पे कोई भी प्रोग्राम एक्टिविटीज हो रही हो अपनी कम्युनिटी की वो कवर करना तो आपकी जिम्मेदारी में आता है। तो मैं तो इतनी अमीर कभी नहीं हूं कि मैं एक एक बंदे को 500 यूरो और 1000 यूरो उसकी जेब में डालकर उसकी अपनी फिल्म चलवाती रहूं। लेकिन हमारे यहाँ ये ले, इसीलिए तो ये मुझे समझ आया कि अच्छा ये कोठियां कहाँ से बनती हैं, ये कारें कहाँ से बनती हैं और ये स्टैंडर्ड इनका कहाँ से आता है। तो बस दुआ करें, अल्लाह करे मेरे हस्बैंड भी शामिल हो जाएं।
1: मुझे शौक लगा, मैं आपको बताऊं कि अब मैं यहाँ बैठा हुआ लाइव प्रोग्राम आपसे कर रहा हूं। हम जब खबर भेजते हैं या खबर लगती है टीवी की भेजते हैं, इवन यहाँ तक तो कभी कभार जो है जब हम खबर भेजते हैं लोग शुक्रिया अदा भी नहीं करते।
0: हाँ, ये होना चाहिए ना, आप समझते ना, आपने अपनी ड्यूटी अदा की है तो ये लोगों का फर्ज है कि वो शुक्रिया अदा करें। एंड टाइम के ऊपर आपने हमारी न्यूज भेजी है, खबर यहाँ पर नहीं भेजती मेरी तो, अभी तक तो कोई खबर ऐसी नहीं गई जो यहाँ पे। हाँ, बल्कि जो पर्सनली कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी तरफ से खुद खबर बनाकर लगाई, उन्होंने अपना सहाफती हक अदा किया कि जी हाँ ये प्रोग्राम हुआ, ये खबर हुई। लेकिन जो आपने देखी होंगी ना, जो 5-5 मिनट की न्यूज चलती है वहां पे और यहाँ से तस्वीरें चलती हैं और तुक्के पे तुक्के जो वहां पे पूरी रिपोर्ट होती है, इसके पैसे दिए जाते हैं और बाकायदा पैसे लेकर ये वहां चलाते हैं। मुझे लगता है ये सहाफी जो यहाँ बने हुए हैं खबर देने के जिम्मेदार, इनको तनख्वाह इनके जो टीवी चैनल्स नहीं देते हैं, बल्कि ये टीवी चैनल्स को शायद कुछ पे करते हैं सालाना, जिसकी वजह से इनको वो टीवी कार्ड मिल गया हुआ है कि हमें इस दुकान का आप ये ठेका दे दें, तो ये दुकान में अपनी मर्जी से चलाऊंगा, साल बाद या 6 महीने बाद या हर महीने आपको इतनी इतनी इतनी मैं किराया भेज दिया करूंगा इस कार्ड का, मुझे तो ये लगता है।
1: परल जी, मुझे शौक लगा अगर साफी पैसे लेकर खबरें भेजते हैं तो मैं कहता हूँ कि लानत है पैसे लेकर खबरें भेजना, इसके लिए
0: मैं बता रही। मुझे फोन करके कहा गया कि आप मुझे 500 यूरो दें ताकि मैं वहां पे ये आपकी रिपोर्ट चलाऊं, ये फलाने फलाने 40 मुल्कों में जाएगी और 50 मुल्कों में। मैंने कहा भैया मेरे को तो 500 यूरो कोई नहीं, रह गई बात जहां पर कि मेरा नाम कहां तक जाना है कहां तक नहीं, ये अल्लाह पाक मेरे पैदा होने से पहले तय कर चुका हुआ है और वो जहां तक पहुंचाना चाहेगा ना बगैर किसी आपकी हील हुज्जत के पहुंचा देगा।
1: मुमताज मलिक साहबा, क्या अम्बेसियां भी इनको पैसे देती हैं? मुमताज मलिक साहबा, क्या इनको अम्बेसियां भी पैसे देती हैं कम्युनिटी फंड से?
0: मुझे तो लगता है कि देती होंगी, मुझे लगता है जिस तरह से वो इनको यूज करते हैं ना अपने मकसद से, क्योंकि मैंने उन मीठे मीठे सहाफियों के मुंह से कभी नहीं सुना कि जी एम्बेसी ने ये काम गलत किया, बल्कि हम जैसे लोग कभी एतराज उठाए ना एम्बेसी में ये काम या एम्बेसिडर ने ये करना चाहिए वो नहीं हुआ, हमको ये सारे लिखने वाले का काम है एतराज उठाना ताकि इसलाह हो सके और ये थोड़ा नथारा होता रहे, लेकिन वो फौरन मैदान में आ जाएंगे और जी हमारी एम्बेसी इतनी अच्छी, हमने ये तीर मारा, हमने वो तीर मारा, ये कुछ जर खरीद जो इसके खिलाफ बोलते हैं उसके खिलाफ बोलते हैं, वहां से पता चलता है ये मीठे मीठे साफी ऐसे नहीं बोल रहे होते, इनके मुंह पे चीनी डाली जाती है हमेशा।
1: चलें जी, आपने तो आज बड़ी खबरें दी हैं कि लोग इस तरह के लोग हैं, मीडिया वाले बड़ी अजीब लगते हैं, इन ममालिक में रह कर भी
0: प्रेस क्लब के नाम पर प्रेस क्लब बना के यहाँ पे गेम खेली जाती है। प्रेस क्लब क्या कर रहे हैं? कम से कम मुझे 3-4 साल से तो कोई खबर नहीं है। मुझे आखिरी प्रोग्राम में एक प्रेस क्लब का याद है जिसमें मैं भी इन्वाइटेड थी, वो गालिब इकबाल साहब हमारे एम्बेसिडर थे जो लास्ट में, माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे इंसान। उनका जो एक उनकी रुख्सती के वक्त उनका था यहाँ से अलविदाई तकरीब थी एक और कुछ अवार्ड सेरेमनी थी, वो मुझे याद है प्रेस क्लब से। मुझे यहाँ भी प्रेस क्लब भी 3-4 बन चुके हैं, खैर से एक भी नहीं रहा, तो वो प्रेस क्लब जो प्रोग्राम हुआ था उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, वो मुझे बिल्कुल याद है। बेशक उसमें बात करने का मौका नहीं दिया, बात करने का मौका उनको मिला जो पर्चियां लिख लिख के आके भेजती ना, मेरी बात करा दो मेरी बात करा दो, तो वो फिर माइक पे आ जाते, मैं ना पर्चियां लिखती हूँ ना पर्चियों वाले काम मैं कर सकती हूँ, तो वो फिर जो नहीं करते ना जो पर्चियां शर्चियां नहीं भेजना जानते आजकल, वो फिर मेरी तरह बैठ के ना तमाशा देख रहे होते हैं वो क्या रहा है यहाँ पे। तो वो मैंने आखिरी प्रोग्राम अटेंड किया था, उसके बाद से मुझे नहीं पता प्रेस क्लब कौन से प्रोग्राम कर रही है, या शायद मैं मेरा काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस वजह से मुझे इतला नहीं होनी चाहिए या मुझे पता नहीं होना चाहिए, ये इनका अपना लेवल है ना हर कम्युनिटी।

0: के हालात हैं, तो वहाँ तो बारामूला से बड़ी अच्छी बड़ी बहुत बड़ी शख्सियत हैं, लेकिन मैं इनका नाम यहाँ पर ऑनलाइन नहीं लेना चाह रहा। उनसे मेरी अक्सर
1: सही है।
0: बातचीत थी और
1: नहीं,
0: रहनुमाई
1: जी
0: भी करती हैं वो।
1: जी
0: वहाँ पे हालात ये हैं जी कि ईद वहाँ पर नहीं पढ़ी पढ़ने देते, कुर्बानी हम नहीं करने नहीं देते, जुमा हम नहीं पढ़ सकते, घर से बाहर हम नहीं निकल सकते। अब ये हाल है कि उन्होंने मुझे बताया है कि जो कुछ भी ऑर्डर हम उन्होंने लेना है कश्मीर के अंदर, तो वो जी दिल्ली से, यानी कि उन्होंने ये बताया कि रेत का जो ठेका होता है वो भी हमसे छीन लिया गया है। ये कल की बात का बता रहा हूँ कि वो भी कह
1: जी
0: रहे
1: जी
0: हैं जी अगर आपने रेत यहाँ से लेनी है तो आप जाके दिल्ली से बात करें। मेडिसिन तो दूर की बात रहेगी रजा साहब, हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे पास टीचर नहीं है, हर चीज़ वहाँ से छीन ली गई है। और बड़ी खूबसूरत आपने बात की है और मैं इस बात पे डनमार्क के अंदर फाइट कर रहा हूँ कि कश्मीरी का मसला जो है ना, कश्मीरी ही को बयान करने दे। मुझे पता है कि श्रीनगर के अंदर आज कितने बंदों की शहीद हो
1: हाँ
0: गई,
1: बिल्कुल
0: ठीक है, मुझे
1: बिल्कुल
0: पता है कि
1: बिल्कुल
0: बारामूला के अंदर क्या वारदात उन्होंने की है, मुझे पता है कि जम्मू के अंदर क्या हुआ, मुझे पता है कि मकबूजा कश्मीर से या आज़ाद कश्मीर में बॉर्डर के ऊपर क्या क्या हुआ है, लेकिन हमारा मसला आज तक 73 साल से किसी जगह पर क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि हम एक हमारी क्या बोलते हैं, हम एक पेज पे नहीं है, हर कोई
1: बिल्कुल
0: अपने अपने कर रहा है। और बड़ी खूबसूरत बात है, मैं एक बार फिर कहूँगा दुनिया भर में जो भी ये रेडियो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं कि यार खुदा के लिए, खुदा के लिए ये मसला इतना करीब आया हुआ है तो हमें ये ख़त्म करने दो। मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ सब अपने पाकिस्तान भाइयों से कि ये नंबर एक से जंप लगा कर नंबर दो पर चले जाते हैं जी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैंने अभी अपनी थोड़ी स्पीच में कहा भी इंडिया कहता है जी वो हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान कहता है जी हमारा हिस्सा है, चाइना कहता है हमारा है। और भाई जिनका मसला है उनसे पूछो वो क्या चाहते हैं। हम ये चाहते हैं जी हम इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते, ये हमारा मसला सबसे बड़ा।
1: कोई कोई कश्मीरी नहीं रहना चाहता
0: हाँ
1: इंडिया
0: जी
1: के
0: हाँ
1: साथ,
0: जी, हमें सबसे
1: बिल्कुल
0: पहले ये आज़ादी चाहिए इंडिया से। मसला ये नंबर टू पे आता है कि हमने पाकिस्तान के साथ रहना है, चाइना के साथ रहना है या इंडिपेंडेंट रहना है। ये फैसला मैं या आप या किसी और ने नहीं करना, ये
1: ये
0: कश्मीर की
1: आवाम, बिल्कुल
0: कम्युनिटी
1: बिल्कुल
0: ने करना है। और खुदारा इस बात को आप समझो, जब वो वक्त आएगा सिर्फ हमारी इसमें आप मदद करें, हमारे पीछे चलें, आगे ना चलें पीछे चलें। मसला कश्मीर, कश्मीरियों को बिल्कुल जिस चीज़ प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हम हमें वहाँ पे आगे करें और हम उस मसले को बिल्कुल बता सकते हैं। हमें पता है कि यहाँ पे कितनी हमारी लाशें उठती हैं दिन को, हमें पता है कि
1: सही
0: कितनी हमारी बेटियों की इसमें दरी होती है। तो ये चीज़ें जो है ना मैं और आप ही बता सकते हैं, तो इसलिए बड़ी अच्छी बात आपने की, मुझे बड़ी अच्छी लगी है और मैं इंशाल्लाह आपसे रابطे में भी रहूँगा।
1: सर, मैं आपको राय साहब मैं आपको बताऊं कि देखिए मेरा शुरू से यही मौकफ रहा है, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो कश्मीरियों के साथ खड़ा है। हम उसका जितनी कदर जितना प्यार कश्मीरी पाकिस्तानियों से पाकिस्तान से करते हैं, इतने मेरे ख्याल में पाकिस्तानी भी अपने मुल्क से नहीं करते होंगे।
0: बेशक
1: लेकिन देखना यह है कि स्ट्रेटेजी जो है, जो स्ट्रेटेजी चल रही है 70 साल से, वो फेल हो चुकी है, कंप्लीटली फेल। देखिए मोदी ने क्या किया, 5 अगस्त को उसने ऑर्डिनेंस पास किया, वो पार्लियामेंट से पास करवाया, फिर 31 अक्टूबर को उसने डिवाइड किया कश्मीर को। आपने जो बात की है ना रेत के ठेके, ये अब क्योंकि यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से अब कश्मीरियों के पास कुछ नहीं रहा, वो सब इस दिल्ली से फैसले होते हैं, दिल्ली जो चाहेगा वो करेगा। तो हमें इस इसकी जो संगीन सूरत हाल है उसका अंदाजा होना चाहिए। और मोदी जो है वो अपने जो उसने पॉलिटिकल वादे किए हुए हैं अपने वोटरों के साथ, उसने ये 28 साल पहले कहा था कि आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करूंगा। आज देखे जिस तरीके से वो जो हिंदू पिलग्रिम्स हैं, हमें हिंदुओं से कोई वो नहीं है, लेकिन वो पिलग्रिम्स जो है वो आ रहे हैं, उनके लिए कोरोना कुछ नहीं है। लेकिन हमारे जो है, जिस तरह आपने कहा कि जुमे की नमाज, ईद की नमाज, कोई मतलब हमारे लिए कोरोना है वहां पे, बाकी के लिए नहीं है। या तो है ना कि अगर स्टेट कर रही है तो उनके लिए भी उसी तरह के कानून हो, वो भी नहीं। तो इससे आप उनकी जो खतरनाक गेम है उसको समझने की कोशिश करें। और दुनिया में हमायत तभी मिलेगी राय साहब जब ये होगा कि ये कश्मीरी हैं, ये मजलूम हैं, इनको सपोर्ट करें। हमें कुछ कश्मीरी फैसला जो भी करेंगे हमें मंजूर होगा, वो चाहे पाकिस्तान के साथ जाएं।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो बच्चियों ने दफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूं तलअल बद्रु अलैना दफ के साथ पहली नात ठहरी। इसी मोहब्बत और अकीदत को मद्देनजर रखते हुए दफ के साथ नजराना अकीदत बहजूर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश खिदमत है।

0: खुद सैदा हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा
0: हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
2: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: खुद सैदा हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।